वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। अलियू मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी, हवा से अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: दूर कहीं अमेज़न के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले दांत वाला डरावना जीव न्यूक्लिया अपने दैत्याकार भयंकर और बेस हेवी बीट्स बजाता है तो मानो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जब जंगल के सारे जानवर डर कर चुप हो जाते हैं तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है,
1: खाओ।

जय हिंद 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? वही, सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 एफएम का चमन। भाई, आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयां, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध आधा लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर आधा चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंद कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मीन्स कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होममेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM means your own radio. स्वाद का जायका निभाती हूँ from our studio. मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची। फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी। इसलिए बी केयरफुल, हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुत्फ उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुत्फ उठाइए।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़?

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। इस स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? ऑल गुड ना भाई? आज हमारा मूड कुछ फिल्मी स्टाइल वाला है। 80s और 90s की जनरेशन को याद होगा कि फिल्मों में माँ अपने बेटे के लिए हमेशा कॉमन खाना बनाती थी, जैसे बैगन का भरता और गाजर का हलवा, जिसका नाम सुनकर फिल्म का हीरो एकदम खुश हो जाता था। वैसे बैगन का भरता और गाजर का हलवा भारत की पारंपरिक और समृद्ध रसोई का अहम हिस्सा है। इसका इतिहास ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। बैगन का भरता मेनली हमारे पंजाब और महाराष्ट्र में काफी फेमस है। महाराष्ट्रियन लोग इसे वांग्याचं भरीत इस नाम से जानते हैं। पुराने समय में जब किसान खेतों में काम करते थे, तब वहाँ ताजे बैगन को सीधे खेत में जल रही लकड़ी या अंगारों पर भून लेते थे। आग पर भूनने से बैगन सॉफ्ट और स्मोकी फ्लेवर वाला हो जाता था। फिर उसमें कांदा, टमाटर और मसाले वगैरह मिक्स करके ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता था। ये बनाने में आसान और खेतों से जुड़ी संस्कृति का प्रतीक है। तो चलिए आज हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम पारंपरिक बैगन का भरता बनाते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा बैगन एक अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम वाला, लहसुन की कलियां 3, हरी मिर्ची 1, तेल 1 चम्मच। ये हो गई बैगन को भूनने की सामग्री। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुनते हैं। हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, मींस अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 1, इसके टुकड़े करने हैं, अदरक 1 इंच, इसे बारीक काट के लेना है, लहसुन की कलियां 2, इन्हें कूट लेना है, प्याज 1 बारीक काट के, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 बारीक काट के, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, गरम मसाला 1/2 चम्मच, कटी हुई धनिया पत्ती 2 चम्मच और ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। बैगन का भरता की रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ा बैंगन लेंगे, उसे अच्छे से धो लेना है। फिर हम उसमें 4 चीरे लगा देंगे। हर एक चीरे में हमें भरना है लहसुन और मिर्ची को। अप्रोक्सीमेटली 3 लहसुन की कलियां और 1 मिर्ची। उसके बाद हम बैगन पर तेल लगाएंगे। ऐसा करने से भूनने के बाद बैगन का छिलका एकदम आसानी से निकल जाता है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, फिर इस तेल वाले बैगन को सीधे गैस स्टोव पर भून लेंगे। इस दौरान हम बैगन को पलटते रहेंगे। ऐसा करने से बैगन सब तरफ से पक जाएगा। कुछ देर बाद बैगन भूनका हो जाएगा, मींस वो अंदर से पूरी तरह से पक जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लगभग 15-20 मिनट के बाद ये बैगन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। फिर हम उसका छिलका हटा देंगे। उसके बाद कांटा चम्मच की मदद से हम बैगन को मसल देंगे। इतने में तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने भुने बैंगन को मसल दिया था। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे जीरा, फिर सूखी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन। उसके बाद हम डालेंगे प्याज। इसे हल्का सा भूनना है। लगभग 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया। इसे अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक चलाना है। अब हम डालेंगे टमाटर। इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। लगभग 2-3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और ढेर सारा प्यार। इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम ऐड करेंगे बैगन। इसे भी मिक्स करना है। अब हम डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया। लगभग 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है। इस दौरान बीच बीच में इसे चलाना है, मींस मिक्स करना है। अब हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि बैगन का भरता चखने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। तो भाई देर किस बात की, एक सुंदर सी प्लेट लीजिए। उसमें ज्वार या बाजरे की गर्मा गर्म रोटी को रखिए। फिर उसके साथ तैयार बैगन का भरता को परोसिए। इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेंगे हरी प्याज। यहाँ पर आप चाहे तो अपना रेगुलर वाला सिंपल कांदा भी ले सकते हैं। उस कांदे को आप एक पंच मारकर फोड़िए। इसे मराठी में कहते हैं बुक्की ने कांदा फोड़ने। यहाँ पर हम लेते हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा बैगन का भरता अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, आप जमीन पर बैठ जाइए, ताजी रोटी का एक निवाला उठाइए, फिर तैयार बैगन भरता को उसमें भरिए, उसकी खुशबू और टेक्सचर को आप फील कीजिए, फिर एकदम आराम से इसे अपने मुंह में डालिए। आहाहा, क्या बात! मिर्ची और मसालों के स्वाद वाला बैगन का टेस्टी भरता और अपनेपन से भरी ताजी रोटी, भाई मजा आ गया। इसे खाते समय बीच बीच में आप हरी प्याज या बुक्की ने फोड़ लेला कांदा भी खाइए। ऐसा करने से बैगन का भरता और ज्यादा टेस्टी लगेगा। यकीन ना आए तो इस बैगन का भरता को आप एक बार बनाकर तो देखिए। आपको अपनी जमीन से जुड़े रहने की देसी फीलिंग जरूर आएगी। आई एम डैम श्योर आप में से कई सारे लोग इस बात को जरूर मानेंगे, है कि नहीं ऑडियंस जी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस बैगन का भरता की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है बैगन का भरता। देसी खाना खाने का जब जी हो करता, तब बना ही लीजिए आप देसी बैगन का भरता। गैस पर भूनोगे जब बड़ा वाला बैगन, तब पुरानी यादों में आप होंगे मगन। एग प्लांट के संग लहसुन और कांदा, इस रेसिपी में नहीं है नॉनवेज या अंडा। इसे रोस्ट करने लगाया थोड़ा सा तेल, परंपरा और संस्कृति का हो रहा है मेल। बैगन का भरता बनाने इस्तेमाल की कढ़ाई, इसे बनाइए तो जनाब फिर मारिए बढ़ाई। रेसिपीज के माध्यम से स्वाद का फसाना, बैगन का भरता में डाला गरम मसाला, इसे गार्निश करने डाला धनिया हरा। हमारा आचार्य 90 FM सामाजिक विषयों से भरा, कम्युनिटी रेडियो माध्यम से जुड़े रहिए हमसे, भाई शोभा बढ़ती रहेगी त्योहारों के क्रम से। बहुत मायने रखती है आप ही की उपस्थिति। सुनिए आचार्य 90 FM और फ्रेश कीजिए मनस्थिति। चलिए दोबारा से अपनाएं हमारा देसी खाना, आचार्य 90 FM पर खाने संग कोई गाना। खाने और गाने की साथ मिलकर जुगलबंदी, अपनापन जताने की यहाँ पर नहीं पाबंदी। टेस्टी रेसिपीज का इस शो पर खजाना, आचार्य 90 FM का अंदाज एकदम मस्ताना। इस शो की होस्ट है आपल्या महाराष्ट्रची लेक। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लीजिए एक क्विक ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। पुरानी फिल्मों में बैगन का भरता और गाजर का हलवा ये एक फेमस जोड़ी थी, तो भाई हम भी आज गाजर का हलवा बना ही लेते हैं। गाजर का हलवा ज्यादातर हमारे यूपी और पंजाब में फेमस है। हलवा का मतलब मीठा होता है, इसे गजरेला या गाजर पाक इस नाम से भी जाना जाता है। गाजर खाने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनती है, हमारा पाचन तंत्र, आंखें और स्किन के लिए गाजर बहुत फायदेमंद है, इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में आप गाजर को जरूर शामिल कीजिए। चलिए अब हम गाजर का हलवा की रेसिपी को सुनते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: ताजे गाजर 1 किलो, फुल क्रीम मिल्क 1/2 लीटर, शक्कर 1/2 कटोरी, मिल्क पाउडर 1 कटोरी, देसी घी 1/2 कटोरी, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट सब 4/4, या फिर डायरेक्टली मिल्क मसाला 2 चम्मच, दैट्स इट। गाजर का हलवा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम हाई फ्लेम पर दूध को उबालेंगे। दूध जब उबल जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। हमें इस मिश्रण को चलाते हुए पकाना है। कुछ समय बाद ये मिश्रण गाढ़ा बन जाएगा, फिर ये मिश्रण कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, मींस इसका खोया या तो फिर मावा तैयार हो जाएगा। जब ये मिश्रण एक गोला टाइप बन जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे, मतलब लगभग 1/2 घंटे में हमारा इंस्टेंट खोया तैयार हो जाएगा। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें सारे गाजर धोकर उन्हें कद्दूकस कर लेना है। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 20-25 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर रखना है। उसके बाद क्या करें, तो भाई अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। उस गरम देसी घी में हम कद्दूकस किए हुए गाजर को पका लेंगे। इसे चलाते हुए लगभग 20-25 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। ऐसा करने से इसका कच्चापन दूर होगा। फिर हम उसमें ऐड करेंगे हमारा इंस्टेंट खोया। इसे उन गाजरों में डालने से पहले हम कद्दूकस करके लेंगे, मींस हमने जो खोया बनाया था हम उसे कद्दूकस करके थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। इस खोया के साथ हम शक्कर को भी मिक्स करेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिलाते हुए अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट तक पका लेना है। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। वाह वाह, क्या खुशबू भाई वाह। अब हम इस मिश्रण पर ढक्कन रखकर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से इसका स्वाद और ज्यादा निखर आएगा। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी परोस सकते हैं, अदरवाइज इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद खा सकते हैं। उसके बाद क्या करें, तो इसे डेकोरेट करना है। इस यमी गाजर हलवा को डेकोरेट करने के लिए हम लेंगे मिट्टी के छोटे सिकोरे या मिट्टी की कटोरियां। ऐसा करने से हमारे प्रेजेंटेशन को एक देसी लुक मिलेगा। मिट्टी की उस कटोरी में हम बड़े प्यार से डालेंगे गाजर का हलवा। इस गाजर का हलवा की आधी तरफ हम लगाएंगे चांदी का वर्क। ये आपको मिठाई की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। अब उस हलवा की आधी तरफ हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को बिखेर देंगे।
आहा, क्या डेकोरेशन है। वाह वाह भाई, मजा आ गया। इसका डेकोरेशन ही इतना अच्छा है कि इसे देखते ही मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। यकीन आए तो आप इस गाजर के हलवा को एक बार बनाकर तो देखिए जनाब। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस तैयार गाजर के हलवा पर हम रखेंगे एक तुलसी पत्र। फिर बड़ी श्रद्धा से हम भगवान जी को इस गाजर का हलवा का भोग लगाएंगे। भाई भोग लगाने से भोजन की सात्विकता और ज्यादा बढ़ती है और हमें भी उस खाने के प्रति आदर भाव महसूस होता है। भोग लगाने के बाद क्या करें? तो भाई भोग लगाने के बाद हम इसे खाएंगे। इसके लिए आप एकदम आराम से जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से उस कटोरी को उठाइए। उसके बाद अपने प्यारे से मुखड़े पर उतनी ही प्यारी मुस्कान को लाइए। अब अपने हाथों से उस गाजर के हलवा का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर और टेम्परेचर आप फील कीजिए, फिर बड़ी नजाकत से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए। आहा, क्या मिठास भाई, वाह मजा आ गया। अन्नदाता सुखी भव ऐसा आशीर्वाद देते हुए एक और बार गाजर का हलवा उसका निवाला आप ले लीजिए। भाई इसे कहते हैं हमारा देसी खान पान का स्टाइल। आप भी कहां उस काटा चम्मच स्टाइल में फंसे हुए हैं। देसी खाना तो देसी तरीके से ही खाना चाहिए। इस गाजर के हलवा की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है देसी स्टाइल का गाजर हलवा। देसी स्टाइल वाला गाजर का हलवा भाई बना ही दीजिए और दिखाइए अपना जलवा। असली सोना मींस गोल्ड 24 कैरेट। देसी घी के साथ आ गए गुलाबी कैरेट। कैरेट को धोकर कर दिया ग्रेट। घर पर ही कीजिए आप इसे क्रिएट। ग्रेटेड कैरेट में ऐड की शुगर। पकाने इसे कढ़ाई या फिर लीजिए कुकर। डेकोरेशन के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, भारतीय संस्कृति में अपनेपन के रूट्स। गाजर का हलवा से भगवान को लगाइए भोग। मिल बांट कर खाने से आता अपनेपन का योग। भारत का तिरंगा लहराएगा ऊंचा। हमारी सेना ने मेहनत से इसे सींचा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाया बैगन का भरता। बड़ा बैगन, हरी मिर्ची और लहसुन को एक साथ भूनकर हमने उसे मसल दिया। फिर प्याज और अदरक वाला देसी तड़का लगाकर हमने टमाटर के साथ इसे हल्का सा पकाया। उसके बाद इसे कोथमीर से डेकोरेट करके ज्वार की रोटी के साथ सर्व किया। उसके बाद हमने बनाया गाजर का हलवा। गाजर को इंस्टेंट खोया में मिलाकर हमने गरम देसी घी में भून लिया। फिर उसमें शक्कर और ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया। उसके बाद एकदम देसी स्टाइल में इसे मिट्टी के कटोरी में सर्व किया। इस प्रकार हमने हमारे प्यारे ऑडियंस जी के साथ स्वाद का जायका बखूबी निभाया। ऑडियंस जी निभाया के नहीं जी, बिल्कुल निभाया। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसे लगी ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी।
चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती हो। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हैं।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना। दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश, सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं, लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 FM सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल्ड स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज। उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह। उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए। आहाहा, क्या बात, भाई मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है। थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब। इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है

एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा। बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अप्पम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यशवी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजर्स धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुराव, गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलू वही करना। देव हंस दिया।

लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापूराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेड था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी September 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में भी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, अब बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकेंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के चलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया। बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया। सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी। पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बाकुराव ने आंखें बंद कर दी, जिससे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था। 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था, मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। 2 दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली, बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में 3 पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे 1, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे 2, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे 3, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी, हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था, एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो,
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी। पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड। सना चिल्लाई, सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था। पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंस। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर। बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का, उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है।

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगती है,
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
0: हाँ।
1: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: रखती हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ।
1: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
0: हाँ।
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ।
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था,
0: अच्छा,
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
0: अच्छा,
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर, अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
0: अच्छा,
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
0: हाँ।
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहां,
0: हाँ।
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ।
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बातें, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
0: अच्छा,
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ,
0: अच्छा,
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज के सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना यह है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका तारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली।
0: है हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती हो, क्या होता है ना हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग विलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और
0: हाँ।
1: उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना है
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आज
0: अच्छा।
1: मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है
0: नौकरी
1: कर रहा हूँ बेंगलोर में हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया
0: क्या बात है?
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर
0: हाँ।
1: में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैं कब जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है हाँ, वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें
0: हाँ,
1: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
0: बराबर,
1: बच्चे हाँ, भी बड़े हो गए अपनी नौकरी हाँ, चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ
0: हाँ,
1: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए
0: हाँ।
1: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ, ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी हाँ। ऐसा लगता है मैं अभी कुछ करने बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स से मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्योंकि क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता
0: हाँ,
1: वो सोच कर चला जाता है
0: जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी
0: हाँ, उनका दुख दर्द देख के
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा
0: हाँ।
1: यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए
0: हाँ।
1: तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, अभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट हाँ।
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था
0: हाँ।
1: गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
0: कैसे रहते हैं
1: हम, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता हाँ, गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम हाँ, लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से
0: हाँ,
1: और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है
0: तो
1: उनको सेव करना है, उनको गाइड करना है
0: राइट हाँ,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे
0: हाँ,
1: मतलब प्रफुल्लित होता था कि हमने हमारे
0: कुछ
1: हाथ से
0: तो
1: कुछ
0: किया
1: तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: कर लेगी छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है कहते हैं ना
0: जी।
1: जिंदगी इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी
0: आज भी आई है,
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
2: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे ही
2: प्यार लाई। क्या बात।
1: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ, मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ। जिंदगी तेरे लिए
2: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? ऑल गुड ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। अर्ज किया है, प्रकृति ने पहना हरे रंग का ड्रेस। सुनिए आचार्य 90 FM और दूर कीजिए स्ट्रेस। अगर करना है ब्राइट अपना फ्यूचर तो जरूर अपनाइए प्रकृति मींस नेचर। आज के शो पर बनेगी एक भाजी। स्वाद का जायका शो पर रेसिपीज को कीजिए हां जी। सुंदर सी साड़ी नाम जिसका पटोला। आज की रेसिपी में इस्तेमाल होगा कंटोला। बारिश के मौसम वाली भाजी ये जंगली। सस्ती सी सब्जी से सेहत बनेगी असली। स्वाद का जायका निभाने का दस्तूर कंटोला की सब्जी है, स्वाद और सेहत से भरपूर। जंक फूड को अब कर दीजिए टाटा। कंटोला की सब्जी में नहीं कोई काटा। काटे वाली हरी सब्जी ये गोल। हेल्थ के साथ टेस्ट का भी निभाएगी रोल। चलिए अब हम आज की फर्स्ट रेसिपी के बारे में बात करते हैं। बारिश के सीजन में हर तरफ हरियाली छा जाती है, जैसे कि जंगल, पहाड़, खेतों की मेंढे और खाली जमीन। हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है। किसी मानवीय खेती, कृत्रिम खाद और कीटनाशकों को यूज किए बगैर कुछ जंगली सब्जियां इस समय अपने आप उग जाती है। मुख्य रूप से वर्षा ऋतु की शुरुआत में दिखाई देने वाली ये सब्जियां औषधीय गुण, विटामिन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। ये सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। बारिश के पानी से ये अपने आप पनपती है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और वात पित्त कफ को संतुलित रखने में हेल्प करती है। वैसे थ्रू आउट द ईयर ये सब्जियां मार्केट में उपलब्ध नहीं होती। मॉनसून के शुरुआती 2-3 महीनों में ही ये मिलती है। इसमें कंटोला मींस करटुली, टाकड़ा मींस तरोटा, भारंगी, फोडुशी मींस जंगली प्याज, कुरडू ऐसे कई नाम शामिल है। आज हम कंटोला की सब्जी हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए बनाने वाले हैं। भाई बारिश का मौसम और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का ये मौका हम जरूर मनाएंगे। जोवार, बाजरा या चावल की गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इस कंटोला की सब्जी को खाकर तो देखिए जनाब, हमारे आदिवासी भाई कैसे इतने फिट रहते हैं ये आपको भी पता चलेगा। झमाझम बरसती बारिश में घर में बनाया हुआ देसी खाना आप खाकर तो देखिए, अपने देश की संस्कृति को आप दोबारा से अपना कर तो देखिए, अपनी मिट्टी से जुड़ी कुछ बातों पर आप गौर फरमा कर तो देखिए। अपनों के साथ अपनापन जताने वाला ये खाना आप खा कर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ऐसे देसी खाने का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा और आपकी कंफर्ट फूड वाली कॉन्सेप्ट एक अलग दिशा में मुड़ जाएगी। यकीन ना आए तो हमारे आज के शो पर बनने वाली कंटोला की भाजी को आप जरूर बनाइए। कंटोला की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कंटोला 1/2 किलो, कांदा मींस प्याज 2, हरी मिर्ची या तो फिर मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर ले रही हूँ। कोतमीर लगभग 2 चम्मच। फिर हमें तड़का लगाने के लिए चाहिए तेल 2-3 चम्मच, राई या सरसों 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हींग
पाव चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इसे और टेस्टी बनाने के लिए हमें चाहिए रोस्टेड सिंगदाना पाउडर 2 चम्मच, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 2 बड़े चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम कंटोला मींस करटुली की सब्जी की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम सारे कंटोले नमक वाले पानी में भिगोकर रखेंगे। ऐसा करने से उसमें से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। लगभग 15 मिनट के बाद इन कंटोलों को साफ पानी से हम धो लेंगे। फिर हमें इनके पतले टुकड़े करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। कंटोला काटते समय अगर अंदर से वो लाल रंग वाला निकला तो हम उसे फेंक देंगे। अंदर से लाल वाला कंटोला कड़वा होता है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम सुनते हैं आगे की रेसिपी। अगर कंटोले के अंदर का बीज कड़क हो तो आप उसे हटा दीजिए। उसके बाद हम प्याज को भी बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। फिर हम ताजा धनिया पत्ता को भी अच्छे से धोकर काट लेंगे। भाई तैयारी तो हो गई। अब हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। अब उसमें हम डालेंगे सरसों। सरसों चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा, फिर खुशबूदार हींग और कड़ी पत्ता। फिर हम डालेंगे प्याज। इस प्याज को लगभग 3-4 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर पकाना है। जब तक ये प्याज पककर नरम हो तब तक आप एक गाना सुनिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कढ़ाई में रखी प्याज अब हल्के गुलाबी रंग की हो गई है। अब हम इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे। फिर कंटोला सब्जी के टुकड़े और रोस्टेड मूंगफली का पाउडर इसमें डालना है। उसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे और साथ में ढेर सारा प्यार भी। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। लगभग 15-20 मिनट के बाद हमारी कंटोला की सब्जी पककर सॉफ्ट हो जाएगी। इस दौरान आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। एक सुंदर सी थाली में हम लेंगे गर्मा गर्म रोटी। आप जोवार, बाजरा या लाल चावल की रोटी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो अपना रोज वाला दाल चावल भी चल जाएगा। उसके साथ हम परोसेंगे न्यूट्रिशियस कंटोला की सब्जी। उसके ऊपर हम डालेंगे कोतमीर और कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल। भाई वाह, देसी खाना थाली में जब सजता है तब उसमें अपनापन ही झलकता है, है कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल झलकता है। अब जमीन पर बैठकर अपनों के साथ मिल बांटकर इस कंटोला की देसी सब्जी का लुत्फ एकदम मजे से उठाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। भाई बारिश के मौसम को देसी खाना खाकर सेलिब्रेट करना मींस स्वाद का जायका निभाने वाली बात है। और स्वाद के साथ हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखना हमें बखूबी आता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस कंटोला सब्जी की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है बारिश वाली सब्जी। बारिश को सेलिब्रेट करने की जब हो मर्जी, तब बननी ही चाहिए पारंपरिक कंटोला की सब्जी। मौसम का जाले खिले से मुखड़े, धुले हुए कंटोला के कीजिए पतले टुकड़े। कढ़ाई में लगे जब खुशबूदार तड़का, इसकी महक से दिल मेरा धड़का। सीजन स्पेशल कंटोला पर बिखरे सेंगदाना, आचार्य 90 FM पर बजा बारिश वाला गाना। डेकोरेशन के लिए डाला नारियल सफेद, कंटोला को उगाने नहीं चाहिए खेत। जंगली सब्जियों का स्वाद अनोखा, आचार्य 90 FM पर लजीज खाने का झरोखा। देते रहिए यूं ही आप हमारा साथ, यहीं पर होगी अपने पन वाली बात। बातों बातों में निकल गया टाइम, आचार्य 90 FM की क्या आपने सुनी राइम? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। भाई बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। अब पैकेट वाला खाना खाने की बजाय इंस्टेंट तरीके से अपने घर पर ही ट्रेडिशनल हेल्दी और सेहत के लिए वरदान माना जाने वाला एक सूप आज हम बनाते हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे गांव में वीकनेस को दूर भगाने और बीमार व्यक्ति को एनर्जी देने के लिए रागी का इस्तेमाल किया जाता था। आज की हमारी नेक्स्ट रेसिपी का नाम है नाचनी से कढ़न मींस रागी सूप। इसमें छाछ, रागी का आटा, लहसुन, जीरा और मिर्ची का तड़का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट चटपटा सा होता है। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। नाचनी से कढ़न बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। नाचनी मींस रागी का आटा 4 चम्मच, थोड़ी खट्टी छाछ 2 कटोरी, देसी घी या नारियल का तेल 1 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच,
लहसुन की कलियां 4, इन्हें कूट लेना है। हरी मिर्ची 1, इसे बारीक टुकड़ों में काटना है। कड़ी पत्ता 5-6, ताजा कोथमीर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। इतना खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं नाचनी से कढ़न इस रेसिपी की ओर। सबसे पहले हम एक बर्तन में छाछ, रागी का आटा और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से इस मिश्रण से गुठलियां निकल जाएंगी। फिर हमें तड़का लगाना है। मोटे बेस वाली कढ़ाई में हम देसी घी या कोकोनट ऑयल को गरम करेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे राई। राई चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। आहाहा, क्या बात! फिर हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। उसके बाद क्या करें? तो भाई, उसके बाद उस तड़के में हम ऐड करेंगे रागी और छाछ वाला तैयार मिश्रण। धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। इस दौरान हम इस मिश्रण को लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से ये मिश्रण फटेगा नहीं। लगभग 4-5 मिनट के बाद ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम उसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बोल। उस बोल में हम बड़े प्यार से निकालेंगे नाचनी से कढ़न और उस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर हम करेंगे सर्व। अब अपनों के साथ मिल बांट कर हम इस नाचनी से कढ़न को एंजॉय करेंगे। भाई, झमाझम बारिश में जब घर में ऐसी देसी रेसिपी बनती है, तब आप समझ जाइए कि इसे बनाने वाला आपकी सेहत के बारे में सोच रहा है। जनाब, इसी को कहते हैं अपनापन दिखाना। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस रागी सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी ले सकते हैं। इससे ये रेसिपी थोड़ी और इंटरेस्टिंग टाइप लगेगी। इस नाचनी से कढ़न की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है रागी से बीमारी भागी। बारिश का मौसम और हो गए बीमार, तब रागी का सूप आपको देगा आराम। बारिश में भीग कर आ गई आफत, तब रागी का सूप आपको देगा ताकत। नाचनी का मतलब लाल रंग की रागी, इसे खाते ही कमजोरी दूर भागी। इसमें डाली थोड़ी सी छाछ, झमाझम बारिश और बूंदों का नाच। बिगड़ी सेहत ने दिया है सबक, इस सूप में डाला थोड़ा सा नमक। इसका साथ देगा रोस्टेड पापड़ क्रंची। बनाइए नाचनी से कढ़न जब मन करे कुछ मंची। आचार्य 90 FM पर स्वाद और सेहत की भरमार, स्वाद का जायका शो पर लजीज खाने का दरबार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के बारिश स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक रान भाजी, मींस जंगल में उगने वाली एक टेस्टी सी भाजी। इसे मराठी में करटुली और हिंदी में कंटोला की सब्जी के नाम से जाना जाता है। कंटोला के पतले टुकड़ों को रेगुलर वाला तड़का हमने लगाया, मींस गरम तेल में राई, जीरा, प्याज, हरी मिर्ची को हींग में डालकर तड़का बनाया। फिर उसमें प्याज के साथ कंटोला को लो फ्लेम पर पकाया। उसके बाद मूंगफली का पाउडर और नमक डाला। फाइनली फ्रेश कोकोनट से उसे सजाया। इस प्रकार हमने रेनी सीजन स्पेशल भाजी को आसान तरीके से बनाया। फिर हमने बनाया एक हेल्दी सा सूप। रागी, छाछ और थोड़ा सा पानी मिलाकर हमने अच्छे से मिक्स किया। फिर कढ़ाई वाले गरम तेल में हमने डाला
राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। उसमें रागी वाला तैयार मिश्रण मिलाकर थोड़ा सा उबाला। गैस को बंद करने से पहले हमने उसमें नमक मिलाया। इस प्रकार हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हमने एक ट्रेडिशनल और हेल्दी सूप बनाया। नाचनी से कढ़न इस सूप टाइप रेसिपी को आप जरूर बनाइए। रोस्टेड क्रंची पापड़ के साथ ये सूप एकदम कमाल टेस्ट करता है। भाई बारिश के मौसम में त्योहार भी तो कई सारे होते हैं और त्योहार मीन्स लजीज खाने की भरमार। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, आगे और कौन सी रेसिपीज होंगी इसका थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि खाने और गाने का ये इंटरेस्टिंग सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके लिए आपके फेवरेट आचार्य 90 FM इस अनोखे से एंटरटेनमेंट वाले डेस्टिनेशन को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। सुन रहे हैं ना ऑडियंस जी। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आज ये भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at, she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashree Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Jal. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100+ videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhartiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खंडवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ीज। और एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है, और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं, और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था, और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को। ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। तो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए, और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे, इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे, और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमाल था। तो क्यों कहूँगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना, और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफ़ी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे, और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा, लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकली बाद में मैं कहूँगी कि ये तो एक जीवन है कम संगीत के लिए, आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया, जो आज भी चालू है। और क्योंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक है, मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लाए, सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाकर दिए थे और सुनती रही मैं, सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो, क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गुरु जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया, और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की वो धनश्री जी से ली है।
0: जी जी, और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश जी बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज़्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज़्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल होता है,
0: मुश्किल है
1: क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुप्ता जी का शुरू से ही
0: पसंद,
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं गणेश जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। तो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन, स्मृति समारोह होता था, वहाँ पर उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: यही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है,
0: अच्छा
1: कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ। फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: सुनना चाहिए, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी
1: जी
0: उसको ज़्यादा मायने रखती है।
1: जी
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: देवास से, अच्छा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सुनते आप सुनते रहिए आचार्य 98 FM योर ओन रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसाइपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक।

0: Welcome after the break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एक काम चाहिए, कम से कम भाव पैदा. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना ज़रूरी है, उतना मेरे लिए रियाज ज़रूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना ज़रूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठ कर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठ कर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है, ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठ कर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें. और तीसरा मनन चिंतन करने से, कि अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है, तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, कहानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना वो भी रियाज.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमैया कॉलेज में बहुत सालों से हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी

0: बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पुणे में है, कहीं कहीं कुछ बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूज़िक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है, लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हो, 75 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कितनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, तो जो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सारे अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा ठिकाना, ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राग हमें आज पता चला बेस्ड ऑन राग मीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे, और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते इसको रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे। तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनका इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
0: अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है भाव पक्ष है, इतना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के, अच्छा 2 प्रैक्टिकल के, तो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी, बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर के आचार्य शारंग देव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं।
0: और ऑटोबायोग्राफी में कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी है,
1: कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े, लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, पंडित जसराज जी हैं, या भीमसेन जोशी सिंह जी, जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है। लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है, सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया उस जमाने में जब ज़्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है।
0: और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, मोहित कार्य जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है, हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सुमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो होना ही चाहिए। कुछ भी गाएं तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते
0: हैं। लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है, ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने बराबर करा।
1: तो मेरा यही इंटेंशन है डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना। मैंने इसीलिए 17 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
0: ऑनलाइन होते
1: थे, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखा स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना है, कोई भी चीज़ हमने सिखाई वो गूगल करते हैं, तो मैडम नहीं वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके लिए बात की है।
0: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर जुड़ते हैं सुनीता डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 98.5।

0: After the short break, you are listening to Acharya Radio from your own radio. और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें. मैम अभी पढ़ते हैं आपके पीएचडी की ओर. पीएचडी में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से, कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको एस आई एस कॉलेज ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर. अच्छा, तो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार में उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी. तो हमारे यहाँ तक उस समय में सुंदरराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए. अच्छा, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है. तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला. और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मज़ा है. हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया. और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे, तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है. और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे लिए म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं.
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज़्यादा रिकवर भी ज़्यादा फास्ट होता है. तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स वो भी सुनते. अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है. तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर. म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर. तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा. और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोज़ के थ्रू मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है. तो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज़ किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज़ किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा. तो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्यगीत, कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ. और जब मैं उनको गा कर बताती हूँ और भी बहुत एंजॉय करते हैं, तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है. तो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम.
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे, तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक.
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है. तो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है. तो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ. जैसे यमन राग की अगर हम बात करें

0: और एक क्वेश्चन, अभी अभी हम रेंज में है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शोज से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है कास्टिंग। तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनकी तरह गाऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है। मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी, क्योंकि राग में जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाती है तब तक हम उसको इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना। तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती हैं जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह नहीं टिकते हैं। तो मेरा यही एक गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: और अंत में ये पूछना चाहूँगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा होते हैं, इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए? अगर एक परफॉर्मर है, अगर वो लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसे तैयारी करनी?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है, तो एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए। कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है एक कॉन्सर्ट में अटेंड किया था कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती हैं फिर कुछ थोड़ा सा झक ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार किया था। तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसे है, प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है, और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये ऑडियंस क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM, और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं।
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे बहुत

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक

0: गुस्सा दी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगे, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।
1: 9 बजे